हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनो हरि दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावै जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है पर कहिंदे ने इह दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर देखन

ख्याल बड़ा सुंदर है, हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्योंकि हरि वाहिगुरु दे नाम तो बिना सब कुछ मैल है। ए तन मैला, ए मन मैला, ए तन मैला, ए संसार मैला, इस संसार दा विहार मैला। आ तुसी देखो हर पासे मैल है, इसलिए सानू सतगुरु जी उपदेश देंदे कहंदे ने हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्या हो पूज चढ़ाई तो किवें पूजा करेगा, की पूजा लई चढ़ावेगा, क्योंकि सब कुछ तो मैल है, सब कुछ मैल है, सुचा की है, क्योंकि असी वो चीज परमात्मा की दरगाह विच अर्पण करनी है जो सुचा होवे। इसलिए सब तो पहले आपा तन सुचा करने, फिर मन सुचा करने, फिर तन सुचा किया जाता है, फिर गुरु दे अर्पण होंदा है। इसलिए आपां उद्यम की करने हैं, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, क्योंकि गुरु की पूजा विच बैठना है, गुरु का सिमरन करना है, अपने आप नूं अरोग बना लै, पहले अपने आप नूं सुचा कर लै, जिस तक सुचा नहीं तू हुंदा ते गुरु दे अर्पण की करेगा। हर बिन सब किछ मैला है संतो, हर बिन सब

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा दे फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह हर

शब्द मरे मन निर्मल संतो। इस मन नु मारना है शब्द नाल। जदों असी इस मन नु शब्द नाल मार लांगे ते मन निर्मल हो जाएगा। बस जिस वेले मन निर्मल हो गया ए पूजा थाए पाई, ए फिर पूजा थाए पै जाएगी। बस कोशिश करिए इस मन नु शब्द दे नाल मार लीए, ए मन निर्मल हो जाए। क्योंकि तुसी वेखदे हो कई बार पाठ करदे आ मन टिकदा नहीं, मन भटकण लग पैंदा। कदी इधर कदी इधर, कदी वह काम याद आ गया, कदी कुछ याद आ गया। हमेशा मनुख कुछ ना कुछ याद करता रहिंदा है। इहदा भाव की होया, मन टिकिया नहीं, मन एकाग्र नहीं होया। इत्थे फिर सहम कहिंदे ने शब्द दे नाल इस मन नूं मारना शुरू कर दिओ। जदों मन थिड़के फिर उहनूं खिंचो, जदों मन किसी पासे जाए फिर वापस लियाओ। बार बार उसनूं वापस लियाण ते एक दिन मन टिक जाएगा। फिर जो मन टिक गया फिर नहीं उखड़ता, फिर नहीं किसी पासे जाएगा। आस पास जो मर्जी हुंदा रहे फिर एकाग्र बैठेगा, क्योंकि मन टिकया होया है। ते मन टिकेगा ही तां जिसले शब्द दे नाल इस मन नूं मारांगे, ये मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल होण तो बाद फिर ये पूजा इस दर ते प्रवान होवेगी, क्योंकि असी आउंदे सब आ ते सब चाहते भी हाँ कि साड़ी हाजरी दर ते लगता है। हाजरी दर ते भाई उसे दी लगती जिहड़ा मन करके बैठता है, मन करके सुनता है, मन करके सुनांदा है, मन करके पढ़ता है, फिर मन हिरदे विच वसांदा है। हुण जबान तो बोल रही है, जबान का काम है बोलना, कन्ना ने नहीं सुनिया। जद तक कन्ना नाल सुनिया ना जाए मन तक पहुंचता नहीं। तीन गल्लां याद रखना, जबान नाल बोलना, कन्ना नाल सुनना ते मन ते असर होना। जब तक तुहाडी जबान दा तुहाडे कन्ना ने नहीं ना सुनिया मन कदी नहीं टिकेगा, मन ते कदी असर नहीं होवेगा। जे मन नू टिकाणा है अपना बोल जोर दी बोलो। जिन्हां दा ख्याल है ना मन टिकदा नहीं, अपना बोल अपने कन्ना नू सुनाओ। जदों बोल कन्न सुनन लग पै मन आपे कबूल करेगा, मन आपे मनेगा। जो हुण मन ने मन लिया फिर सतगुर कहिंदे ने सुनिया मनिया मन कीता पाओ। सुन के मनिया ते मन के प्यार उत्पन्न हो गया, अंदरों भावनी पैदा हो गई। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मन ना। यही तेरा तीर्थ स्नान है, यही गुरु साहब समझा रहे ने कि पूजा अंदर करनी है। तेरा नाम किया चरना ठिया, हे मेरे परमात्मा मैं तेरा नाम चंद, चंदन जिवें है ना, तेरा नाम चंदन है ते मैं चंदन दियां टुकड़ियां बना लिया ने। ते जे मन उरसा हो

कहते हैं अगर तू मेरा प्यारा है, जब तेरे नाल मेरा प्यार है तो उस प्यार दे विच कोई कमी रह गई? उस प्यार दे नाल ते मेरिया तमाम भुखां कहते हैं वह पूरियां हो गई हैं। तू मेरो प्यारो, इतना लफ्जी कहना यह सिद्ध करता है कि कोई हस्ती, कोई शख्सियत, कोई बींग मौजूद है जिस दे नाल महाराज जी का

तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए। ए मेरे प्रीतम, प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक्सप्रेशन है। ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आते हैं अमृत प्रिया का नाम। प्रिया प्यारा कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। सतसंग जी मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हां जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुनना, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

0: दूसरी लाइन जिन नाम प्यार केंद्र जिन्हों का नाम दे नाल प्यार है वह जाग्यो हुए हैं बाकी सब सुते पे
1: से जन जागे जिन नाम प्यार
0: एक और पंक्ति
1: गावण गावे जिन नाम प्यार
0: केंद्र गाँवे भी उही हैं जिन्हों का नाम दे नाल प्यार एक और पंक्ति कहते हैं
1: एक नाम तारे संसार गुर प्रसादी नाम प्यार
0: तो बार बार नाम प्यार आ रहा है

जवाब है बाणी। संतां संगत मिल रहे क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम होंदे हैं, प्रेम रूप होंदे हैं। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साधी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी च देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल है। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे नाल ही बनानी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संतां संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहाय

any number is sattva sarangani. जिसने ए मंग मंग ली है उस दिया सारिया मंगा पूरी और केड़ी मंग नानक को ब्रह्मया कर सच देव क्योंकि सच सदा रहने वाली पूर्ण बिखुटे नानका पूर्ण में हो गया पूरे पदार्थ में भी नहीं रहे तो इस वास्ते हमें पूर्ण विकुटे नाम का ओणक सच और सिद्ध भी है दास पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा है उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे कर्म वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भजन फरमाने सच्चे मार्ग चल देना उस तुत करे सच जड़ा सच पिया बोलता है वो दुध पिया जड़ा झूठ पिया बोलता है वो जहर पिया सच बोलन जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलन जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराऊंगी वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सबू के अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर उसकी राखी करनी पैदी संभाल करनी पै फिर सामू जरा अम फल है वह प्राप्त इसी तरह उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र

मान देते हैं। किसी ने पूछा हमारे ऐसा गुरु अर्जुन देव बादशाह बनाए दसो भाई, जिस रास्ते पे एक दिन इंसान भी तुर रहे हैं हमारा पता दसो कितने वीर उस देखो कितने प्रयाग सब बांबे जाना मीला का पता ये भी पता भी इतने समय के बाद पहुंच गए थोड़े जे मीला वास्ते इंसान टिकट भी खरीदता है सीट भी बुक कराता है कपड़े भी नाल ले लेंदा है बिस्तरा भी रस्ते टेलीग्राम भी दे देता है दोस्तों को मैं फलान ट्रेन से आ रहा तो वो स्टेशन से थोड़े जैसा हजूर कहते हैं कि दिन तो लंबे पेंडे महाराज किन्ने वील है तो हजूर फरमाओ देते

मार्ग देख सुनना है, गरीब ने भी सुनना है, अमीर ने भी सुनना है, कंगाल ने भी सुनना है, राजे महाराजे ने तो कौन अपन है महाराज ये तंता इतने डलते ही रह गए, कारा भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धियां ने भी साथ नहीं देना है, कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर हो

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जेवा कहाँ को बकता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे, बिन विद्या कहाँ को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का

मन क्यों गहरा करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम। तकरीबन छेवां हफ्ता या सतवां होएगा। एक प्रकरण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में साडा मन विक जे। छे विशेषताइयां आप जी नाल गुरु सांझियां करा रहा है। पांच आप जी सरवण कर चुके हो, अज छेवीं दी बारी है। कोई संगत नवी आई हुंदी है, केवल बोल के लंघदे हां। पहलियां पांच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषताई खालसा जी, धरती के समय समय अनुसार जितने भी अवतार आए, मच्छ अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, होर भी द्वापर दे, त्रेते दे, होर भी समय अनुसार अपनी ड्यूटी दे के धरती तों

लागू। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने और माने पुमाना। हर सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पिछाना। उस्त निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाना। जन नानक खेल कठन है किनु गुरमुख जाना। जन नानक खेल कठन है किनु गुरमुख जाना। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो। पहला मरन कबूल जीवन की छड आस। होए सबना की रैन का ता आओ हमारे पास।

स्वाति भूल दे पिछे पे तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जो दुनिया करदा है, मेरे पातशाह किते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदा दी प्रीत कर लै, एदा दा स्नेह कर लै, एदा दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

साहब उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला लिया, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिन्ना नाम जपया सिमरन कीता भावें कोई वड्डा है भावें कोई नीवें, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू नाम जपण वालियां नू सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण भरी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावां बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहंदे ने

जे भाई सत्तां समुंदरां दे पानी दी स्याही बना ले जावे। कलम करो बन राय, सारे जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावन।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समो को बहुत दयारे, ये मेरे मालिका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्यामार का कर कृपा मेरे दे।

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आश लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है। भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरा मालिका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

और परम स्थान पे तो आवाज आई कि ए नारद प्रभु जी बसाए मैं तो साधु की रचना कर नानी कह सुनो रे लोगा संत रसन को बस ही जेड़ा वचन कर देन तीन काल से घाटे पै गए जिस शहर सेठ गंगाराम गंगाराम गंगू बन गया कर्जे वाले ने कोठी चो धक्के मार के बाहर कर दिया धोबी ने कुत्ते तरह ना करता ना कर दिया हार के तुर पिया इथे मैं बड़ा दुखी सिख ने किया गंगाराम रो ना काबर ना गुरु भली करेगा गंगाराम कहने लगा किस तरह पानी तेन माया चाहिए है ना साहब जी कल युगी जीवा के उधार करने वास्ते बावनी साहब का तीर्थ रच रहे हैं वे किस तरह संगत सेवा कर रही है फिर दो तरह सेवा हो रही है गंगाराम एक निष्काम सेवा है एक साकाम सेवा साकाम सेवा जे करेगा तो एक अठियानी रोज मिले दो वेले का प्रशादा लेंगे तो जे निष्काम सेवा करें तो पता नहीं धन गुरु अमरदास पातशाह तेन की हूं तेरी मैं साकाम सेवा कर रही है या निष्काम सोचा कि सेवा साकाम सेवा ना रखिया नहीं मिलेगी जिन्हें लखां गिणी उन्होंने वास्ते अठियानी की चलती तो सोचा मना चलो साकाम सेवा कर दे या की पता गुरु कृपा कर ही दे सेवा कर तो हो इसको हो प्राप्त असी तो साकाम सेवा कर दे गुरुद्वारे की मत्थे टेक दे पातशाह पुत दे दो माया दे दो कारोबार दुनिया दे गुरु दे दें पर बाबा जी बचन कर दे सर भागा वाला वो गुरसिख है जो निष्काम सेवा और उसाई मैं भी गंगारामा फिर सेवा कर दू फिर लंगर ही चला जाए झूठे भांडे मारने शुरू कर फिर पैरिस गंगाराम लंगर ही चला गया रात दिन सात संगत जूठे पाने मारे कदे कदे मन ख्याल आ जाता है मन गुरु नाल कोई बचन ही नहीं है दर्शन ही की थी कदों भागा वाला दिन आएगा जो गुरु मेनू दर्शन देवेगा ते अपनी रसना तो कवेगा गंगाराम तेरी सेवा परवान है कुछ मांग ले वो दिन खड़ा पर रात दिन सेवा करी जाता है किसी वेले मन निराशा वाल भी चला जाता है पर फिर गंगाराम अपने मन को समझाता है मना गुरु समर्थ है अंतर्जामी ढिला ना पाए सेवा करी जा कदे ना कदे नाड़े पांडे मांगता है नाड़े गंगाराम

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। सेवा मिल गई है तो कर ही तदे का मार्ग मक्ष गंगाराम रात दिन भांडे मांझी जाने ते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर दो भागा वाला दिन चाहिए तन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो रही गंगाराम की सेवा थाए करा सामान क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं आखो सी दुख की एक घड़ी आ जाए कि नहीं आ जाए पता ही नहीं लगे किस तरह समा यही है मान धन गुरु अमरदास पातशाह मार्ग ने मेहनत की तो आओ जो सेवा मिल जाए गुरु घर की करो इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए गंगाराम दे सदके सानू भी दीदार का किड़का मिल जाए तो साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु घर किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी धन तन मन धन ना जिसने भी सेवा की थी है अदूर फरमाते जान के सिमरन सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगा राम की कामना किस तरह गुरु ने सकते अमृत साढ़े पाई साढ़े जीवन का कीर्तन आशा जी अमृत वेला सच ना बड़े आई जिदा नाम ही अमृत वेला है वो उसद की समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो धन गुरु नानक पातशाह खां के सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बख पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश कई बाबा ने सिंह जी उथे चौबी घंटे का सत्संग है डेली कोई आए चाहे पर पूर्णमासी का समाज खास होता है दास इंडिया विच होवे बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरदा ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी तुहाडे कोल आई तुसीं तां भी जुड़े हुए हो तुहाडे दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावांगा सुरत नानक साहब पहुंचा के दर्शन कर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सेवा करो आप जिस गुरु ने सानू ते दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए यही अरदास करिए पले अमरदास बनते तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह की तासी कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां पे आ माया कई रूप धार के पिछड़ी पिछे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए आखो सही गुरु नु पा गया तो जीवन अनुसार का पाठ सारी मिल के करिए उस तो प्राप्ति करिए धन गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करम सारे गुरसिख माई पाई धन गुरु राम का अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਰ

उस वह करके अर्थात समुद्र की मत कह हो काट बनास्पति सगरी दिख बहू के लेखन काज बन हो सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपाण न बिनती काल कृपाण न बिनती ना तो तुमको सब न कर हो बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट पराद हमारे हो कूट पराद हमारे अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आ

रखना खाली ना रहे। आओ सारे मालिक दे दर पे हाजिया लगे। बाबा जी वचन कर दे सन जरा गुरु नानक दे दर खाली चला जाएगा और सारा खाली रहेगा। आओ चोरी करो ते सारे हाजिया। कीर्तन हो रहे कीर्तन दे प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे। टेपा लगी कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाए। यह तो छोटी टेप है गुरु नानक पातशाह के दरबार इतनी वड़ी सारी टेप लगी हुई है। जो भी गुरु कुमाई भाई इतने आता है जिस पहुना आता है वो रिकॉर्ड होया जाता है।

जिस तरह के भगत कबीर साहब बयान करते हैं, राम भगत अणियाले तीर, ये प्रेमा भगती के अणियाले तीर ने। इन तीरां दा दर्द या प्रभु जानता है या फिर वो जिहड़े प्रभु नाल

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जिहदी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरे दा फुल, पत्तियां निकल आईयां। ता इस बच्ची ने कपड़े दे एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नू खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लैके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणां नू मत्था टेक के ए फुल भेट करना है। इस बच्ची दे मन दी ये भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया, आनंदपुर साहब जाण नूं भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों, अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वल देखिया, सोहना फुल खिड़दे है। उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणां सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणां फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उसे तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के, कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणां विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता किरपा करनी, ए जड़ा फुल

बाग दा मालिक जसवंत राय बाग दी सैर करन आया। फुल तां होर भी बड़े सन, पर जद इहदी निगाह इस चकोदरे वल गई, अपने नौकर नूं कहण लगा, कामिया फुल ते होर भी बड़े ने, पर एहो जिहा फुल सारे बाग विच नहीं, जा ए चकोदरा तोड़ के लिया। ओ कामा अपने मालक दा हुक्म मन के फुल तोड़न वास्ते तुरिया। ओ बच्ची जड़ी दूर पानी पई भरदी सी बाल्टी विच, उसने नौकर नूं फुल वल जांदा देखिया ते समझ गई कि नौकर फुल तोड़न चले। इधर नौकर ने फुल नूं हाथ पाया फुल तोड़न वास्ते, उधर उस बच्ची ने उची सारी एक तरला लिया